0: किरीक्षण तमोगे बाल निर्माता सहित नो नियो बोले अफेट जो वाटा साउदी बाकुंडा से नो पूजा बत्ती निपसन
1: Ovintis, nei maki informasau balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.